दोस्त वो है जो थम के रखता है हाथ, परवाह नहीं उसको कौन है तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में चमक दिखती है जब होते हैं तुम्हारे साथ। गुजर जाता है वक्त मिनटों में जब करते हैं उससे बात। दोस्त वो है जब सामने आ जाएगा खुद बयां हो जाता है दिल के हालत। कुछ सोचना नहीं पड़ता जब होती है उससे बात।

0: नमस्ते प्यारे श्रोताओं, आपका स्वागत है हमारे सांस्कृतिक भाग में। जैसे कि हमारे पहले प्रसारण तजिकिस्तान विदेशियों के दृष्टिकोण से में हमने दुशांबे और उसकी पर्यटक जगहों के बारे में बताया, तो वादा किया कि अगले प्रसारण में आपको दुशांबे की दूसरे खूबसूरती और पर्यटक जगहों के बारे में बताएंगे। हमारे रेडियो के साथ रहिए। दुशांबे एक अद्भुत बड़ा शहर है जो तजिकिस्तान की राजधानी है। इसे राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से देश का प्रशासनिक केंद्र सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है। यहाँ ही हर चीज ऐतिहासिक घटनाओं में से भरी हुई है। स्थानीय चौराहों, प्राचीन इमारतों और संग्रहालयों में घूमते हुए आप उन पूर्व सभ्यताओं के जीवन के बारे में जान सकते हैं जो कई सदियों पहले यहाँ मौजूद थी। इस राज्य के संस्थापक इस्माइल सामानी है, जिसके नाम पर स्थानीय मुद्रा का नाम रखा गया है। तजिकिस्तान गणराज्य का राष्ट्रीय पुरावशेष संग्रहालय ये सभी युगों की कलाकृतियों का एक वास्तविक खजाना है। यदि आपको पुरातत्व, इतिहास और मानव विज्ञान पसंद है तो आप यहाँ पूरे दिन के लिए गायब रह सकते हैं। लेकिन भले कि आप इन विज्ञानों से दूर हों, गाइड के लिए धन्यवाद। संग्रहालय का दौरा अतीत में एक वास्तविक यात्रा बन जाएगा। पुरावशेष संग्रहालय के मुख्य प्रदर्शन सरस की रानी और खतलोन बुधा या निर्वाण में बुधा की मूर्ति है। सरस की रानी पिंजकिंग के पास सरस की प्राचीन बस्ती में एक लड़की के अवशेष मिले हैं। उसके दफनाने को बड़े पैमाने पर गहनों से सजाया गया था और लड़की चौथी सहस्राब्दी ईसाई पूर्व में रहती थी। खतलोन बुधा 5.5 टन वजन और 13 मीटर की एक विशाल मूर्ति है, जिसके कुरगनचुबे के आसपास अजीनतेपा की प्राचीन बस्ती में खोजा गया था। तजिकिस्तान का पुरावशेष संग्रहालय दुशांबे के 10 सर्वश्रेष्ठ आकर्षकों की सूची में अपना सही स्थान रखता है। संगीत वाद्य यंत्र संग्रहालय 1990 में संगीतकार, अभिनेता और तजिकिस्तान के पीपल्स आर्टिस्ट गुरमिंज जौकीबेकोव द्वारा बनाया गया था। संग्रहालय पूरे देश में इसके निर्माता द्वारा एकत्र किए गए 100 से अधिक विभिन्न संगीत वाद्य यंत्रों को प्रदर्शित करता है। लेकिन संग्रह के बड़े हिस्से में गुरमिंज के गृह क्षेत्र बदख्शां से प्राप्त वस्तुएं शामिल है। यहाँ आप तार, दुतार, रुबाब और गिजक जैसे उपकरण देख सकते हैं। और केंद्रीय स्थान पर शाह सितार का कब्जा है, जो 100 साल से अधिक पुराना एक तार वाला वाद्य यंत्र है। साथ ही संग्रहालय में अन्य देशों के संगीत वाद्य यंत्र के साथ पामीर संस्कृति के दिलचस्प वस्तुएं भी शामिल है, जिनका संगीत से कोई लेना देना नहीं है। संगीत वाद्य यंत्र संग्रहालय के आगंतुक ताजिक संगीत का लाइव संगीत कार्यक्रम सुनने के लिए काफी भाग्यशाली हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ नियमित रूप से छोटे प्रदर्शन, व्याख्यान और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आधुनिक दुशांबे मध्य एशिया का एक अपेक्षाकृत युवा शहर है, जो केवल 125 वर्ष पुराना है। तजिकिस्तान में साल भर में सैकड़ों पर्यटक लोग आते जाते हैं और तजिकिस्तान की सुंदर प्रकृति, स्वच्छ हवा और ताजिक लोगों के आतिथ्य का आनंद लेते हुए वे अपनी मातृभूमि में अपने साथ अच्छे प्रभाव लेकर जाते हैं। कई विदेशी लोग साल में कई बार तजिकिस्तान आते हैं और उनमें से कुछ तो कई सालों तक तजिकिस्तान में रहते हैं और काम करते हैं। मिस्टर सरवर खान कितने साल तजिकिस्तान में रहते हैं और यहाँ का रहना उनको बहुत पसंद है। अगर हम उसको पूछें कि दुशांबे आपके लिए कैसा लगा है, तुरंत जवाब देते है कि बहुत अच्छा, और मैं खुद को यहाँ अजनबी महसूस नहीं करता हूँ, और कहते हैं
1: दोस्तों आज दुशांबे शहर के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ये ताजिकिस्तान का बेहतरीन और खूबसूरत शहर है दुशांबे। ये चारों तरफ से पहाड़ियों से ढका हुआ है। इसकी खूबसूरती सर्दियों के मौसम में और ज्यादा निखर जाती है, जब चारों तरफ से पहाड़ियों के ऊपर बर्फ से ढकी चादर बिछ जाती है। बेहतरीन खूबसूरत नजारा नजर आता है। ये शहर सैलानियों को, पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। बड़ा खूबसूरत शहर है। इसके आसपास की जगहें जो हैं, जैसे नुराक हो गया, वर्जोब हो गया, स्कंदरकुल हो गया, ये सब पर्यटक स्थल दुशांबे शहर से ज्यादा दूर नहीं है, जो एक दिन में जा करके घूम करके और वापस आया जा सकता है दुशांबे। दुशांबे शहर से करीब में एक जगह है सफेदरा। जो पर्यटक बर्फ को पसंद करते हैं, सर्दियों के मौसम में बर्फबारी का मजा ले सकते हैं, आइस स्केटिंग कर सकते हैं और तरह तरह के वहां पर मनोरंजन की चीजें मौजूद हैं। दुशांबे शहर में खाने पीने की चीजें, रेस्टोरेंट की तादाद काफी है। हर तरह के खाना आपको यहाँ मिल जाता है। यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं हैं। पर्यटकों को किसी तरह की खाने की परेशानी नहीं होती। इसमें अगर भारत से आए हुए पर्यटक हैं तो उनको भारतीय खाना भी मिल जाएगा। 3 भारतीय रेस्टोरेंट भी यहाँ हैं। पर्यटकों को ये शहर बहुत आकर्षित करता है। एक खूबसूरत शहर है और पर्यटकों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि शहर के अंदर ही एयरपोर्ट है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है एयरपोर्ट से शहर के अंदर आने में। और यहाँ के लोग बहुत ही मेहमान नवाज हैं, जो मेहमानों को पसंद करते हैं, खासतौर से भारत से आए हुए लोगों को बहुत पसंद करते हैं यहाँ के लोग, यहाँ के निवासी। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि एक बार दुशांबे शहर को ज़रूर देखें। धन्यवाद।
0: तजिकिस्तान के राष्ट्रीय संग्रहालय में 15,000 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्रफल के साथ 22 हाल मौजूद है। इसके संग्रह में देश के लगभग संपूर्ण सांस्कृतिक विरासत शामिल है। प्राचीन काल में आधुनिक समय तक का इतिहास, चित्रकला और व्यावहारिक कला, लेखन और साहित्य और दिलचस्प चीजें हैं। यहाँ 25,000 से अधिक प्रदर्शनियां प्रदर्शित की गई है। तजिकिस्तान के राष्ट्रीय संग्रहालय की प्रदर्शनी का निरीक्षण करना उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जो पूरे देश की यात्रा किए बिना तजिकिस्तान को जाना चाहते हैं, और जो लोग देश के प्राचीन बस्तियों और प्राचीन स्थलों की खुदाई देखने आते हैं, उनके लिए तजिकिस्तान की राष्ट्रीय संग्रहालय की प्रदर्शनी स्थानीय इतिहास और संस्कृति की पूरी तस्वीर प्रदान करेगी। तजिकिस्तान में सदरुद्दीन ऐनी नामक ओपेरा और बैलेट थिएटर मौजूद है। तजिकिस्तान का मुख्य थिएटर मंच 80 से अधिक वर्षों से अपने दर्शकों को प्रसन्न कर रहा है और आज भी यहाँ नियमित रूप से नई प्रस्तुतियों का मंचन किया जाता है। थिएटर की इमारत अपने आप में एक दिलचस्प ऐतिहासिक स्थल है, जो अपने क्लासिक शैली, सफेद दीवारों और आभूषणों से सजाए गए स्तंभों के साथ दुशांबे के वास्तुशिल्प परिदृश्य के पृष्ठभूमि के खिलाफ खड़ा है। आज शास्त्रीय ओपेरा और नए कार्य दोनों थिएटर मंच पर दिखाई देते हैं। रूसी, यूरोपीय और ताजिक नाटककारों की कृतियां प्रस्तुत करते हैं। प्रदर्शन ताजिक और रूसी में दिखाई जाती है। अक्सर विभिन्न देशों के मंडलियां ओपेरा और बेले थिएटर में आती है और ये नियमित रूप से शास्त्रीय संगीत के विदेशी कलाकारों के लिए एक मंच भी बन जाता है। हम कह सकते हैं कि ये थिएटर राजधानी के सांस्कृतिक जीवन का दिल है और दुशांबे के 10 सर्वश्रेष्ठ आकर्षकों की सूची में अपना स्थान रखता है। प्यारे श्रोताओं, हमारे प्रसारण यहाँ खत्म हो जाता है। यहाँ हमने आपको दुशांबे शहर के दिलचस्प और पर्यटक जगहों के बारे में बताया। अगले प्रसारण तक शुभकामनाएं।

दोस्त वो है जो थम के रखता है हाथ, परवाह नहीं उसको कौन है तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में चमक दिखती है जब होते हैं तुम्हारे साथ। गुजर जाता है वक्त मिनटों में जब करते हैं उससे बात। दोस्त वो है जब सामने आ जाएगा खुद बयां हो जाता है दिल की हालत। कुछ सोचना नहीं पड़ता जब होती है उससे बात।

वसंत फूलों का मौसम है और प्रेम के फूल के तरह सुगंधित और आनंददायक रूप में प्रकट होता है। शायर के भव्यपूर्ण कविता ये बेईस के अर्थ को व्यक्त करती है। हिलाली के प्रेम कवितायों में सच्चे मनव्य प्रेम के गर्मोहक अत्यंत संक्षिप्त लेकिन गहराई से अभिव्यक्त हुई है। इस पीड़ादायक अवस्था को शायर ने बाले बहनते समझ है। हिलाली के दीवान का अधिकांश भाग गजलों से बना है जिसे उन्होंने स्वयं 1561 में संकलित किया था। उनके दीवान लगभग 307 गजलों 32 रुबाइयों 8 क़ितों शाम और फानूस नामक पहले और अन्य छोटे काव्य रूप से मिलकर बना है जिसमें कुल लगभग 27,000 शेर है। उनके क़ितों और रुबाइयों के विषय विविध है जिनमें दार्शनिक नैतिक और सामाजिक विचारों के इलाक मिलते हैं। हिलाली ने अपने जीवन के अतिम वर्षों में 3 मसनवे रंजे और इसके पीछे एक विशेष कारण बनाता जाता है। कहा जाता है कि एक बार कवियों की एक सभा के हिलाले का उल्लेख हुआ। अधिकांश साहित्यकार ने उनकी कविता की प्रशंसा की और कहा कि वे छोटे काव्य रूपों विशेषकर गजल में अद्वितीय है। लेकिन उनमें से एक ऐसा कवि भी था जो केवल मसनवी या दास्तान लिखता था। उसने हिलाले की आलोचना करते हुए कहा कि वो केवल गजल लिखते हैं और कथ लेखन में कमजोर है। इस टिप्पणी के बाद हिलाले ने मसनवी लिखना आरम्भ किया और 3 दास्तानें रचें। प्रश्न तो आपने साहित्य अगवर्ता कर अक्रम में बद्रुद्दीन हिलाली एक गजलकार शायर के रूप में विषय पर रोजे तो जेगर रेडियो के हिंदी विभाग का प्रसारण सुना। नमस्कार।